0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापार

0: व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अंश 29° नॉमीटर अर्थात 1305 किलो हर्ट्सवर आणि एफ एम बँडच्या 102 मेगाहर्ट्सवर श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण। आता वेळ झाली आपल्या नमस्कार परभणी अंतर्गत विचार शलाका या कार्यक्रमाची। यामध्ये शरीरशुद्धी याविषयी संजय पिंपळगावकर यांचे विचार आपण ऐकूयात।

0: घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
4: Both sides underscored the importance.
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

0: डोवाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@

0: KIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों

0: पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जाँच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है, शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Myanmar President U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President U Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
4: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement

ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। एसटी बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के कामों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की वज़ीर आला की हिदायत। क़ानून साज काउंसिल की 17 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारी अरीज़े दाखिल करने की मोहलत ख़त्म। तकरीबन तमाम सियासी जमातों में बगावत। IIT में दाखलों के लिए मुनक़िदा JAE एडवांस्ड इम्तिहान में लड़कों ने हासिल की बरतरी। मराठवाड़ा साहित्य परिषद के 2026 के तसनीफ़ाती अवार्ड्स का ऐलान। और आइंदा दो दिनों में मराठवाड़ा के बेशतर अजला में खबलज मानसून बारिश का इम्कान। अब खबरें तफसील से। रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का हदफ 100% बसों को ई बसों में तब्दील करना है। इन बसों के लिए दरकार चार्जिंग स्टेशन कायम करने के काम को तेज़ करने की हिदायत वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दी है। वो गुज़िश्ता रोज़ ई बसों के हवाले से ST कॉरपोरेशन के इजलास में मुखातिब थे। वज़ीर आला ने बताया कि तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र के तहत ST कॉरपोरेशन के बसों के बेड़े को 2029 तक 50%, 2035 तक 80% और 2047 तक 100% ई बसों में तब्दील करने का हदफ है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ST कॉरपोरेशन का 5150 ई बस का अहम प्रोजेक्ट ज़ेर अमल है। इसी दौरान रियासत के तमाम बस स्टैंड्स पर बैतुल खला की सहूलियात अब मुफ्त कर दी गई है। मुसाफिरों के साथ बस स्टैंड पर आने वाले शहरियों को इस सहूलत के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी होगी। इस फैसले पर मुसाफिरों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। लाडली बहन स्कीम से 80 लाख से ज़्यादा इस्तेफादा कुनिंदगान के नाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खारिज कर दिए गए हैं। बहबूदी ख़वातीन व अतफाल महकमे की वज़ीर आदिति तटकरे ने बताया कि इन नामों को 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा की आमदनी, EKYC की अदम तकमील, ख़ानदान के किसी फ़र्द के नाम पर गाड़ी और दीगर सरकारी इस्कीमात के फ़वायद का हुसूल जैसी वजूहात की बिना पर खारिज किया गया है। उन्होंने अपील की कि अगर अहल अफराद के फ़वायद को रोका गया है या दीगर इस्कीमात के फ़वायद को भी बंद कर दिया गया है तो मुतल्लिक़ अफराद फौरी तौर पर बहबूदी ख़वातीन महकमे से राबता करे। तटकरे ने यकीन दहानी कराई कि मौसूला तमाम मामलात की महकमे की तरफ से दोबारा तस्दीक की जाएगी। क़ानून साज काउंसिल की 17 नशिस्तों के 2 साला इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी अरीज़े दाखिल करने की मोहलत कल ख़त्म हो गई। छत्रपति संभाजीनगर के औरंगाबाद जालना हलके इंतखाब के लिए महायुति की जानिब से सुहास शिरसाट और महाविकास आघाड़ी से दिव्यानी पाटिल डोनगांवकर ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि सिल्लोड़ नगर परिषद के सदर बल्दिया समीर अब्दुलसत्तार ने बगावत करते हुए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना परचय नामजदगी दाखिल किया।

नांदेड़ कानून साज काउंसिल नशिस्त के लिए कल 8 उम्मीदवारों की 17 दरखास्तें मौसूल हुई। इनमें भारतीय जनता पार्टी के अमरनाथ राजूरकर ने महायुति से और रामदास पाटिल सुमठानकर ने कांग्रेस से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। धाराशिव लातूर बीड़ कानून साज काउंसिल हलके से महायुति के बसवराज पाटिल और महाविकास आघाड़ी के महेश देशमुख ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि दीगर 6 आजाद उम्मीदवारों ने भी अपने उम्मीदवारी अरिजे दाखिल किए हैं। दरियसना नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने महायुति के तमाम 17 उम्मीदवार मुंतखब होने का यकीन जाहिर किया है। जब उनसे महायुति में बगावत से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि महायुति की हलीफ जमातें इकट्ठी होंगी और बागी उम्मीदवारों की दरखास्तें वापस ले ली जाएंगी। वजीर महसूल और बीजेपी रहनुमा चंद्रशेखर बावनकुले ने भी यकीन जाहिर किया कि महायुति में कोई इंतशार नहीं है और युति तमाम 17 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। इस इलेक्शन के लिए रायदही 22 जून को होगी और उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है, ताहम घरेलू इस्तेमाल के गैस की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। मुंबई में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 43.5 रुपये महंगा हो गया है और उसकी कीमत 3,066 रुपये 50 पैसे हो चुकी है, जबकि 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये का इजाफा किया गया है। दरियसना मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल और ATF यानी हवाई जहाज़ों के ईंधन पर बरामदाती टैक्स में तख़फीफ की है। पेट्रोल की बरामदात के विंडफॉल गेन पर आयद टैक्स को निस्फ करके 1.5 रुपये फी लीटर किया गया है, जबकि डीजल पर 13.5 रुपये फी लीटर और ATF का बरामदाती टैक्स 9.5 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर के जसद खाकी पर कल मुंबई में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। सुमन कल्याणपुर का गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हो गया था, वो 89 बरस की थी। अदालत उज़्मा ने कल नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान को मौजूदा कलम और कागज़ तरीक़े के बजाय कंप्यूटर मबनी ऑनलाइन तरीक़े कार से कराने का मुतालबा करने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने वादे किया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले ही मुतअद्दिद मसाइल का सामना कर रही है, इसलिए कंप्यूटर पर मबनी फॉर्मेट में दोबारा इम्तिहान कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। IIT में दाखिलों के लिए मुनाक़िदा JEE एडवांस इम्तिहान में लड़कों ने सबकत हासिल की है। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना इस इम्तिहान के नतायज के मुताबिक इस साल 56,880 तलबा दाखिले के लिए अहल करार पाए हैं, जिनमें 46,773 लड़के और 10,107 तालिबात शामिल हैं। दिल्ली डिवीज़न के शुभम कुमार ने 360 में से 330 निशानात हासिल करके मुल्क में सरफहरिस्त मकाम हासिल किया, जबकि दिल्ली डिवीज़न की ही आरोशी देशपांडे तालिबात में पहले मुकाम पर रही और उसने 280 निशानात हासिल करके आम फहरिस्त में 77वां मुकाम हासिल किया है। मराठवाड़ा साहित्य परिषद के तहत 2026 के तसनीफी अवार्ड्स का कल ऐलान किया गया। परिषद के सदर कौतिकराव ठाले पाटिल और डॉक्टर दादा गोरे ने छत्रपति संभाजीनगर में ये ऐलान किया। नांदेड़ के मुसन्निफ डॉक्टर अनुराग श्रीकांत लवेकर की तसनीफ पुस्तकें साद आनीदाद को नरहर कुरुंदकर अदबी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि प्रिंसिपल M. चिटनिस अदबी अवार्ड के लिए छत्रपति संभाजीनगर के डॉक्टर शिव कदम की किताब चित्रपटाचे शास्त्र संहिता ते समीक्षा का इंतखाब किया गया है। थाने के क्षितिज देसाई की कहानियों के मजमूए शीत पेटी तुन जेवा जागियते को बी रघुनाथ नावल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया, जबकि परभनी के डॉक्टर साहेब खंदारे की किताब मराठवाड़ा अमूर्त संस्कृति संचित को नरेंद्र मोहरीर अदबी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महंगाई के खिलाफ कल मुल्कगीर सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए। छत्रपति संभाजीनगर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने पैठन गेट इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान ईरान और रूस से सस्ते दामों पर ईंधन खरीदने, किसानों की ज़रई पैदावार को ज़मानती कीमत देने जैसे

0: मुतालबात किए गए। मुख्तलिफ अंबेडकरी सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की तरफ से कल हिंगोली में जिला कलेक्टर दफ्तर से एक एहतजाजी मोर्चा निकाला गया। तंजीमों की तरफ से दर्ज फहरिस्त जात के ज़मरे में रिजर्वेशन की ज़ैली ज़ुमराबंदी की मुखालफत और इस अमल को फौरी तौर पर रोकने के मुतालबात पर मबनी महजर ज़िला कलेक्टर को पेश किया गया। लातूर शहर समेत मदाफाती इलाकों में कल ज़ोरदार बारिश हुई। गुज़िश्ता दो दिनों से होने वाली कबलज़ मानसून इस बेमौसमी बारिश से शहर और देही इलाकों में दर्ज हरारत में कमी वाक़ हुई है। इसी दौरान छत्रपति संभाजीनगर ज़िले के खुल्दाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। दरियासना रियासत में सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत कल अकोला में 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मराठवाड़ा के परभनी में 40.8 डिग्री सेल्सियस, बीड़ में 41.2 डिग्री, छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव में औसतन दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि आइंदा दो दिनों में रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ोरदार हवाओं और गरज और चमक के साथ बारिशें होंगी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। एसटी बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के कामों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की वज़ीर आला की हिदायत। आईआईटी में दाखिलों के लिए मुनक़िदा जेईई एडवांस इम्तिहान में लड़कों ने हासिल की बर्तरी। और आइंदा दो दिनों में मराठवाड़ा के बेशतर अज़ला में कबलज़ मानसून बारिश का इम्कान। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई।
1: मध्यम लहरी 1305 किलो हर्ट्सवर आणि FM बँडच्या 102 मेगा हर्ट्सवर श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण।
2: ऐका ऐका ऐका गाववाल्यांनो, KYC अपडेटच्या मेसेजकडे दुर्लक्ष करू नका। तात्काळ KYC अपडेट करा। जर ओळख किंवा पत्त्यामध्ये कोणताही बदल नसेल तर स्वतःच्या बँकेत किंवा ATM मध्ये अथवा बिझनेस करस्पॉन्डंट कडे म्हणजे BC कडे जा, किंवा बँकेत रजिस्टर्ड ईमेल अथवा मोबाईल नंबर किंवा मोबाईल बँकिंग ऍप अथवा पत्राद्वारे त्याची स्वघोषणा द्या। आणि जर कोणताही बदल असेल तर ओळखीचा आणि पत्त्याचा नवीन पुरावा दाखवा। खातं सक्रिय ठेवून बँकिंग सेवांचा लाभ घ्या। आपलं KYC अपडेट करण्यासाठी जवळच्या ग्राम पंचायतीच्या कॅम्प मध्ये किंवा बँकेच्या शाखेमध्ये जा।
3: RBI सांगते,
4: जाणकार बना, सतर्क रहा।
1: श्रोते हो, आता वेळ झाली आपल्या हिंदी चित्रपट गीतांच्या कार्यक्रमाची, अर्थात लख लख चंदेरी या कार्यक्रमाची। सुरुवातीला आपण ऐकूया ब्रह्मचारी या चित्रपटातलं मोहम्मद रफी आणि सुमन कल्याणपूर यांनी गायलेलं हसरत जयपुरी यांचं गीत।

0: अभी सुबगाही प्रोग्राम के तहत आपने भजन सुने। पेश कर रही थी विद्या स्थाया। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है आज सवेरे।
1: और श्रोताओं, वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 2 जून 2026 है और 2 जून का इतिहास देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक बदलावों का गवाह रहा है। आज ही के दिन आधुनिक भारत के नक्शे पर एक नए राज्य का उदय हुआ था। वर्ष 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना आधिकारिक तौर पर भारत का 29वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर इस नए राज्य का उदय हुआ।

और जिसकी राजधानी हैदराबाद बनी। आज ही के दिन 1875 में सिकंदर ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफोन पर मानव आवाज का सफलतापूर्वक प्रसारण किया, जिससे वैश्विक संचार तकनीक में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1946 में इटली में राजशाही को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ, जिसके तहत देश आधिकारिक तौर पर एक लोकतांत्रिक संसदीय गणराज्य बना। आज ही के दिन वर्ष 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान सर्वेयर 1 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अमेरिका का पहला

याद कर रहे हैं आधुनिक उड़ीसा के पहले आधुनिक वैज्ञानिक और देश के दिग्गज वनस्पति शास्त्री डॉक्टर प्राण कृष्ण पारीजा को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। एक ऐसे समय में जब देश में संसाधन बेहद कम थे, डॉक्टर पारीजा ने अपनी प्रतिभा के दम पर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया। वे वहां से वनस्पति विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। भारत लौटकर उन्होंने प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर और धान की खेती पर वो ऐतिहासिक रिसर्च की जिसने हमारी कृषि व्यवस्था को बदल दी। साल 1955 में देश ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 2 जून 1978 को भले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका संघर्ष और उनकी सफलता आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। हम याद कर रहे हैं भारत के एक और महान भौतिकी विज्ञानी डॉक्टर देवेंद्र मोहन बोस को, इनकी भी आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर डी एम बोस ने परमाणु भौतिकी और ब्रह्मांडीय किरणों यानी कि कॉस्मिक रेंज के विक्षेत्र में वो ऐतिहासिक काम किया जिसने वैश्विक विज्ञान को हिला कर रख दिया। उन्होंने ही भारत में पहली बार क्लाउड चैम्बर तकनीक का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष से आने वाले अदृश्य किरणों की फोटोग्राफी की थी। याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस सबसे बड़े जादूगर को जिसे दुनिया द ग्रेट शोमैन के नाम से जानती है।

पुण्यतिथि है हिंदी सिनेमा के युग पुरुष राज कपूर की। नीली आंखें, चेहरे पर मासूम से मुस्कान और चार्ली चैपलिन वाले अंदाज में जब राज कपूर पर्दे पर आते थे तो थिएटर तालियों से गूंज उठता था। आवारा, श्री 420, संगम और बॉबी जैसी फिल्मों से उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि रूस, चीन और मध्य पूर्व के देशों में भी हिंदी सिनेमा का परचम लहराया।

राज कपूर सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता नहीं बल्कि एक विजनकारी निर्देशक और निर्माता भी थे। उन्होंने आरके स्टूडियोज के बैनर तले समाज के हर रंग को पर्दे पर उतारा। सिनेमा के प्रति उनके इसी बेमिसाल जुनून के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

जून 1988 को सिनेमा का यह चमकता सितारा हमसे दूर चला गया, लेकिन उनकी फिल्में और उनके गीत आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमार के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मुकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप से तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलाइन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमार के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए वसी तर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमार के सदर भारत के 5 के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामनिगारों को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत के तई भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफैन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेजा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने ख़ासतौर पर तजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मसनू ज़हानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमार के सदर आला सतह के वफद के हमराह आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुज़ाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टीम दो तरफा तजारती माहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरात कार हैं, जबकि अमेरिकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरात कार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुँच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के क्लीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर रही है और हर किसी ने यह महसूस किया है कि कैसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में हर शोबा में तरक्की रूनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमत अंजाम देने का मौका हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़िश्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलों का आगाज़ और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल में क्लीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदाम पर एक खुसूसी सीरीज।

0: वनिता मंडळाचा कार्यक्रम आपण आत्ताच ऐकलात. प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ऍप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. दुपारचा 1 वाजतोय. थोड्याच वेळात हिंदीतून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. आम्ही त्या सहक्षेपित करत आहोत काही क्षणातच.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है. ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है. आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं. छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है. ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता. लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है.
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की. सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की. डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की. श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए. भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं. श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है. मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें. मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें. नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है. इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई. न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है. ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है. एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है. ये 6 जून तक खुला रहेगा. CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित

75 पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: परिसर हा कार्यक्रम पुन्हा प्रसारित करण्यात आला. प्रसारभारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एअर ॲपसहित 558 किलो हर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. दुपारचे 2:15 वाजता दोपहर समाचार हिंदीतून बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल. आम्ही
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया. राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया. सरकार ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए. पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई. राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी. और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है. ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है. आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें.
2: भारत सरकार

0: जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्राप्त।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
0: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
0: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा कर

0: के आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये

0: आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्सवर दुपारचे 2:30 वाजलेत। प्रसारित करीत आहोत नादब्रह्मांतर्गत शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। आजच्या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहात विद्या खांडवे यांचं गायन, राग वृंदावनी सारंग। विलंबित बंदिश तिलवाडा तालातनबद्ध आहे। बंदिशीचे बोल आहेत आज बदरवा बाजो हिंदाल रंग। द्रुतबंदिश 3 तालात निबद्ध आहे। द्रुतबंदिशीचे बोल आहेत आये मोरे लाल घरया सखजी। त्यांना तबला साथ आहे प्रसून चॅटर्जी यांची आणि हार्मोनियम संगती केली आहे जयंत फडके यांनी। ऐकूया विद्या खांडवे यांनी गायलेला राग वृंदावनी सारंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति शी चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब

20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बेवाल, दिनेश बेवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मध्ये दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. लक्षद्वीप, केरलम, तामिळनाडू आणि बंगालच्या उपसागर परिसरात 4 जूनपासून मोसमी पाऊस पुढे वाटचाल करेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. दरम्यान राज्यात आज चंद्रपूर जिल्ह्यात ब्रह्मपुरी इथं सर्वाधिक 43.3 degrees Celsius तापमानाची नोंद झाली. मराठवाड्यात परभणी 40.5 degrees Celsius, नांदेड 39.4, बीड 40.3, छत्रपती संभाजीनगर इथं 39.3 तर धाराशिव इथं 39.1 degrees Celsius तापमान नोंदवलं गेलं. शेवटी पुन्हा काही ठळक बातम्या. लाडकी बहीण योजनेतून वगळलेल्या अपात्र महिलांकडून पैसे परत घेणार नाही मुख्यमंत्र्यांचा निर्वाळा. पुरुष लाभार्थींकडून मात्र पैसे परत घेतले जाणार. निवडणूक आचारसंहितेमुळे शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा निर्णय लांबणीवर. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. आमचं यानंतरचं मराठी बातमीपत्र उद्या सकाळी 7:10
1: वाचको नरेंद्र दत्त सेमवाल.
2: आदौ मुख्य वार्ताः. राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते. अपि च वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन, आर्थिकेन, शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 arab rupees आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्. केंद्र सर्वकारेण आवर्जन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारं अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवास समयं वर्धयितुम् इच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आवर्जनावधे समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति. भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्. सर्वोच्च न्यायालये न्यायाधीशानां संख्या समेध्य 38 संजाता. अपि च विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मंत्री राष्ट्रपति च मारियो वोग्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्वभूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ. अथ वार्ताः विस्तरेण. राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते. शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं जागरूकः सक्षमश्च कारयति. अद्य नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म. अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदेव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन, आर्थिकेन, शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति.
3: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है. मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए. युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा.
2: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्य उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्. द्रौपदी मुर्मुवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपि तु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्य उचित मार्गदर्शन प्रदानं च आवश्यकमस्ति.
3: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं. छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है. ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता. लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप जैसे अनेक युवाओं ने विभिन्न
2: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 arab rupees आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्. वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान्. अवधेयं यत् यूपीआई इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट

0: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्चन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: We categorically reject.
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश

0: पावसाला।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम।

वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: किलो न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ। 2 to 3 branches also।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना

0: है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Government forms panel to probe into procurement of services for on-screen marking system by CBSE. Appoints Lokhande Prashant Sitaram as CBSE chairperson. India rejects third-party involvement in resolving boundary matters with Nepal. India successfully flight tests indigenous Rudram 2 air-to-surface missile. Prasar Bharati's Waves OTT crosses 1 crore users within 2 years of launch. 21 people killed in Russian strikes across Ukraine. And in women's cricket, India to take on hosts England in third and final T20 international at Taunton tonight. And now the news in detail. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. The OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission, S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. In another development, Senior IAS Officer Lokhande Prashant Sitaram has been appointed as the new Chairperson.

0: जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
1: तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
0: ये मददगार कितनी ज्यादा थी ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1,13,00,000 लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था
1: जी।
0: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है, लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
1: जी। राजेश जी, अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसपे उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
0: सुधार दो रूप में आप देख सकते हैं। एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
1: जी,
0: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया, फिर 50,000 रुपया का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ ना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए सुविधा हो रही है और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है
1: जी।
0: तो दोनों रूप से फायदा हुई और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, 2 स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
1: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
0: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, सिर्फ आप मछली बेचते थे, अब मछली को जो है सो फ्रिज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
1: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
0: शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूएलबीज हो, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है, उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना, और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है और लोग लोन चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
1: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
0: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की, और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन रिपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा, आप तभी

0: लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो लोन मिलेगा
1: जी,
0: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में।
1: जी जाहिर है, तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है और उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा

0: हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की। और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा। आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा
1: जी,
0: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में।
1: जी जाहिर है, तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है और उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
0: डिजिटल इंसेंटिव है, अगर आप जैसे ग्राहक से अपने पैसा जो है सो QR कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है, जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो। तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं, अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं, जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
1: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
0: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं हैं। तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है, तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
1: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से। एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
0: अर्थव्यवस्था को फायदा ये है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहां जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको होता है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो। इस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी, लेकिन जहां जो क्रिटिकल है वहां वो उस पर एक्सपेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
1: आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया, तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
0: एक तो हम देखना चाहते थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाहते थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं। तो 4 बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनके घर का ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ और खाने पीने का, एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, ये इन 4 पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
1: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए, क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
0: उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना अमूलचूल है, ये अमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता
1: जी,
0: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता है।
1: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी स्कीम में शामिल होंगे?
0: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, अब हम उसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक तो वो फायदा हो रहा है और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनके उनको एक बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
1: सर, आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई

0: आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सके।
1: जैसे हमारा जो स्कीम है, जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75-75 लाख लोगों ने लोन ले रखा है।
0: बिल्कुल।
1: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से। या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकंड लोन के लिए एलिजिबल हैं। उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकंड लोन लिया है, और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपे कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60% 70% लोग जो है सो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
0: पिछले हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
2: सर हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे ठेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर
0: जी।
2: और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे दुकान। फिर से शुरू के तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर। तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई, ये सर अच्छा हुआ कि पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा। फिर उसके बाद जो हम लोग उसमें रजिस्टर कराकर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। पहली बार तो उसमें मंथली देना पड़ने लगा, फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000, 20,000, 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है। उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला, और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
0: बिल्कुल। तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी बात बता रहे थे कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी बॉडी होता है, आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो। और नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें, और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कंबाइन रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा, जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR यूएलबी अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
0: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थी के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा

0: मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: We categorically reject
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: Desist from making any comment on them.
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपुकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम ट्रू मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्रीचंद्र शेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विब्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा है कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 38 रन से जीता, वहीं दूसरा मैच इंग्लैंड ने 26 रन से जीतकर श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking.
4: प्रसार भारतीच्या वेब्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एअर या ॲप सहित 558 किलो हर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। नादब्रह्म कार्यक्रमात आज रतन मोहन शर्मा यांचं गायन, त्यांनी गायलेला राग गोरखकल्याण। विलंबित खेळाची बंदिश 1 तालात आहे, द्रुतबंदिश 3 तालात आहे। त्यांना तबल्याची साथ अतुल ताडे यांनी, हार्मोनियमची साथ अनंत केमकर यांनी केली होती। ऐकूया रतन मोहन शर्मा यांनी गायलेला राग गोरखकल्याण।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is आकाशवाणी, the news read by RS Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal, days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
2: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of